हो जी बिल्कुल मीना वालो, अबे को फोटो खोजो ठीक ना चिकुम दी आबो हम कोई तो से कहाँ चिकुम दी आबो हम शरीको ग्रा प्रोग्राम दस रही है।

0: कॉल कर ले जी मल नंबर दे 0315 693 594 7 बांदी मासरा खबर कर ले 0315 693 594 7 बांदी जमा सारा खबर कर ले जी ओके जी देना मेरा बानी देना लवा लुकमान एंड शाकिर मीनियारी स्टोर दे जी सराय नवरंग की दहाई कपने टोल प्रोडक्ट मिलावी की जिन्हें हो रहे मेहमान जन्नत स्टोर दे जी फजल नेमान दे जी सिर्फ सरा दहाई कपने प्रोडक्ट मिलावी की बनो की गोरीवाल अड़े के जुबैर अलीशा कासमेरे दे जी दहाई कपने टोल प्रोडक्ट की मिलावी की नवरंग की चिकम देगा आजम एंड सन शॉपिंग सेंटर दे दहाई कपने टोल प्रोडक्ट की मिलावी की देना लवा डॉक्टर किनामत सेब दे डी एच क्यू अस्पताल तमखामख दहाई कपने टोल प्रोडक्ट की मिलावी की जी औ दिन अलावा चिकम देगा यानी वर्षा चकम देगा यानी वर्षा लकी के चकम देगा लकी मरवत के जरगनान बाजार के शरीफ दुकानदार दे जी अगसर मिलावी की दिन अलावा कक्की की सादिक शॉपिंग सेंटर दे जी अगसर मिलावी की वर्षा यानी दिन अलावा ताजुड़ की फहद आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले दे अगसर मिलावी की दिन अलावा जरगनान बाजार की जाहिद एन अबिद दुकान दे जी दहाई अपने टोल पटाख की मिलावी की जी दिन अलावा चकम देगा यानी कम से पाते जी हाजी गंबेला की काशिफ रोमान एंड ब्रदर्स दुकान दे जी अगसर दहाई अपने टोटल प्रोडक्ट मेला भी की जी लटुल रसुना मा द बया द बानी आदि जी असल के नदीन ज्यात रसुना नूर हमाल राजी जी ओबदा सीधा शुमंगवायो सने चिता सु बड़ी रसुना बानी बिया ढेर बोर शी जी बल्कि ता सुची द रेडियो आवाज चरता मौरी जी हर आगजी की जमंग द हाई का स्मेड द कपने टोटल प्रोडक्ट बाकी मेला भी की ठीक छुरी कता सु द हाई कपने वाले सर से किस्म मालूमात की जी नता सुबह 0301 88 88 097 बाने कालो की जीडीर आसान नंबर दे 0301 88 88 097 वाने तासो मजीद मालूमात अल्लाह से कोले छी 0301 88 88 097 बाने तासो मजीद मालूमात अल्लाह से कोले छी दा जमंग दा हेल्पलाइन नंबर दे कम दुकानदार लता सुदा नंबर वर कोई जी हम तासो वर कोले छी जी 0301 88 88 097 कता सुता बजाते खुद पखपल सब मसाला दे जी सब मालूमात कोई जी नता सुबा कायदा तो गबानी दहाई का स्मेल द कंपनी द प्रोडक्ट वाले सरा गंश मेर मालूमात पदा का नंबर बानी तरला से कोले छी जी ओके जी देर से आता मेरा बानी देर शुक्रिया जी नंजमा बखेल चितासु जमंग टूर प्रोग्राम पखा मुशे वावरे दो जी मुजमा बजा तो खुद पखपल अमनन चे कम दे गाल का मूड शरीर ठीक नहीं जी तो बदी वजह माने चे कल जमंग मूड ठीक नहीं जी नो बेता सो असिम चे कम दे गा लका बिल्कुल ट्रकुन पसी दिखी वाली भी जी बेस्ता सुम दो जरूर नहीं खो बरहाल जाम देना मेरा बानी देर शुक्रिया मंग अखपल पैगाम तरता सुपुर दरूर सुरु जी द मेदी द पारा द लाइपोसाइम शरबत इस्तेमाल की टेंशन डिप्रेशन द पारा जिंको पास ऑफ एंजाइम गोली इस्तेमाल की सबब इंशाल्लाह मुलाकात की गई चरते खादाबाद खुशहाल उसे दलवेला पमान पाकिस्तान जिंदाबाद हाई कंपनी पाइंदाबाद द मेदी और द दिमाग द गंशमेर बीमारों सरा तरमख है लका मेदा बूट द मेदी गेस द मेदी जरासीम मेदा स्वजीदल खुलेला तरखी उबरात लल या प मेदा की दर्द की दल द खुलेना बदबुई रात लल
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
3: خورے حس خفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مخنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر

जी अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम सुपर रिपोर्ट तारिक का तासुब खिदमत की हाजिर शो बिल्कुल इश्मा कस्मे पाकिस्तान प्रोग्राम सर टोल मीना वालू था चरता चरता के मंग आवाज और देशी टोल मीना वालू तो प्रोग्राम की डिज याद हर कले

0: 4, 3, 2, 1, 4.
1: RJ Shahid Khan.
2: खुश खबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब ममालिक, यूरोपी ममालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
3: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
2: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बनू लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जन स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर विख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सर बाने मालश की नो ददा पसर बो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तेल विश्तान गुर्जवल बंदवी विख्तान गण औ उजद कवी देसर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-3333।

0: खुशखबरी, खुशखबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म। मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
0: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बनू लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर विख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सर बाने मालश की नो ददा पसर बो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तेल विश्तान गुर्जवल बंदवी विख्तान गण और उजद कवी देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-36-36 और बल नंबर दे 0335-352-33-33। खुश खबरी।
2: मुदसर शॉपिंग सेंटर चरतना चितासो हस्तलेशे हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा हेयर आयल, शिफा ब्यूटी क्रीम और शिफा विटामिन सी फेस वाश। मुदसर शॉपिंग सेंटर ताजी कला के पास आसानी सरा मिलावेगी और द देना अलावा मुदसर शॉपिंग सेंटर के हर किस्म कास्मेटिक सामान, गारमेंट्स, हर किस्म बुरके, शादी ब्याह सामान, द हर किस्म पीतो लेस और पीतो सरा सरा नरिनाओ जननाओ पेजार। मुदसर शॉपिंग सेंटर दुकान पते दर सरा नोट कई डॉक्टर हबीबुल्ला मार्केट ताजी कला अड्डा बनो।

बिल्कुल किम किम जिसे दिमिर आवर दिंगी दिम किम जिसे दिमिर लिसन अरे समय इंदा टाइम दिमिर का आवाज उरी आगे तो वही दे प्रोग्राम से तुझे मिस तरह कॉल पे लिखा रोतला से मैसेज पे लिखा और कमेंट पे लिखा बने काले पर दिमिर नंबर दे 09272912 यानी 09272912 09 0927291292 बने कॉल के और प्रोग्राम से मिस तरह गडीनो के प्रोग्राम तरह से और सर किम के ना पते नंबर बने तो सवाल कॉल होली और सर के वैसे ना मिस मैसेज की और मैसेज अपना बिल्कुल मोबाइल से राइट मैसेज चालू से और तो होली के आर ए के आर के ना बस फेस वैसे ना बड़ा फल नंबर चला लेके ना फ्लैग वाले पैगाम फ्लैग वाले मैसेज और सेंड के पापा जी असर ऐसे बने निकला तो सवाल मैसेज कमेंट कॉल और थी प्रोग्राम शो बिया बिया बिया शामिल है और सर अगर सर आगा वर दिन के आगा लिसनर से वैचारा पते प्रोग्राम से मिस डॉ यानी कॉल ने शिकलाई मैसेज पर तड़तांगे नस्ता यानी पैसे नस्ता दी वो तो उससे उदास होगी ना जैसे फेसबुक से न सब हो जान से ताज उम्बेल हर सर सर कोर से होगी ना तो ताज उम्बेल रोग ले वो तबुली के यानी वो तबुली के सर शैवली सर शैवली सर शैवली दांव लिखे क्या ना

Selamat telah dulur seminar lan diwalikum salam dhewe juta lan. Kasmatul khana manana manana. Bache rakhi phatak patar dil bahut buri cheez hai. Patar dil acha patar dili bahut buri cheez hai. Pyare insaan us par तोकता है तोकता भी नहीं जिसके लिए रोया है आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय लश्की ये क्या ना सभी क्या ना रखी पड़ पत्रे दिल बहुत बुरी चीज है प्यारे इंसान उस पर तोकता भी नहीं जिसके लिए रोया हो वहाँ जबरदस्त यो जहान मनाना शुक्रिया।

एक रगुल था फाइजा वजीर था नादिया बहार था और जला मरव था खेसा खटक था और मुस्कान खटक था ऋषि खान था सारा खान था नया वो जनखेल था और जलरुबा खटक था सुमैया खटक समा खटक वो अजान खटक यमुना खान अंशा खान और सानिया वजीर खुर रगुला और सीमा दौड़ा फातिमा

वैसे सलाम इस तरह से ही रोहिणिया घर के नाम वैसे मौज मस्ती प्रोग्राम के वेलकम ओ इबे हफ्ते बाद तारीख बेटा स्पेशल सलामिना वालेकुम सलाम देर जुतवना बिल्कुल सलामिना दवर तवर सल और देर जुतवना पला सिकिम दी कना और देर रहमतवान ना सिकिमा मिस्टर मेस की और दे फरनगुल गाने की इंफॉर्मेशन कड़ा देखना आओ दर एप्लीकेशन साइड हो और देर चना फरमेश के टोले अर्ज को ना देखड़ी जगह बार बार मैसेज और दरमी जरूर दर शामिल रही ओहानिया फायज अल बिया टोले तसलमिना कड़ी थी देर जुतवना दोबारा दा अगेन मैसेज कर यो जहान मरना मुझे सुपर टू मेल गुरु ना जी वजीर एम जी परिंदे पेशावर नाट रोग SST commission test mein okay which is okay there is jo tamanna behada behada manana

0: तरंगे चल दे
1: बिल्कुल चाहे तो तरंगे चाहे बस आप गोल है तो मिर्जा जी की मिर्जा भी रावल करता है मिर्जा भी काल नहीं बस तो चिकनी का ना वो खामोशी से प्रोग्राम अरवल करता है अच्छा तो कादर मालूम अवल करता है मिर्ज पर कादर है जिका चीज मिर्ज वास्तरा वो नियो है खाना नो मिर्ज चिकनी का ना मिर्ज नहीं वेरावल करता है
0: बिल्कुल बच्ची तो सब इस तरह करता है की वो
1: नो
0: वेरावल नहीं
1: बस मिर्ज वेरावल नहीं करता है पका लोन से मुंह बने द्रे का सुन डेर जुद गुरुन है पाता है
0: वो कौन कौन है
1: मध्य पहला नंबर जो है पसाड़े से है साबेर वजीर स्तर से जिनाश जो है वो सन मेरी अपागुल त्रोर है अपागुल न्यू है ओपो चूटी चूटी से छोटा मरवा जो है दादरे का सुन मुँह बने गुरुन है जगह का ना चिता गात्रे का सुन जे ओ साबिल गिला नहीं कवल करता है साबिल सीधे क्या कला टाइम चुट्टी कवल करता है आगा चिकिम दे क्या ना आगा लिश्की बेवफा है
0: लश्की
1: जोत बेवफा है वो साबिर जो है वो हर वक्त इस तरह प्रोग्राम से शामिल अवल करता है इश्मा पर करता है चिकिम प्रोग्राम है बस मिश्र दाई काल करल करता है
0: बस अल्लाह सब को जनाब दरवर कवल हुआ करता है हमारे लिसनर को और तुम्हारे साथ
1: अच्छा पागल उदास सिक्किम ने कहना आसन मेरे अपागुल सिक्किम ने कहना आगा हाउ वो रुई देने ला अपागुल से कालू की कहना नो आगे ता सर मेरी मिर्ज खबर कल करता है अखपला युवा यूनिवर्सिटी से दखले बलचाता नंबर कवल करता है
0: बिल्कुल बिल्कुल बलचाता हम दगे बरे के बहुत शुरू करते हैं
1: देखिए मिर्ज जो है कंजूसी करता है अच्छा अपागुल सरंग चल रही देर से हमारा प्रोग्राम तर नो मना देखिए शुक्रिया देखिए चल रोले
0: चौकी
1: नो दा चिकिम ने कहना दा दसो की कहना चे दे नगमे पाउश तो तू सोने चिकिम ने कहना दे मिर मशरून प्रोग्राम में स्पेशल आगे तरह डाले हाँ
0: आले खबर हो दा अपने जैसे तेरे पेरे मोच प्रोग्राम में डाला ये मुझे लगे अच्छी बात रही मिलती तो सही होता या क्या नहीं होता तो सही होता हूँ बताए बस बस की जार बरा
1: अच्छा तो मरा बस के वो चिकिम ने कहना वो से भी ताले बावराना बस इस ताले वाने मिन तू दो वर्ष लगा ना
0: आले खबर हो रहा मुझे दंडन खबर है खबर की खत्म जंजीरी दौड़ाए न